दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे।

0: आप ही सृष्टि नु पैदा कर रहे हो
1: बंधन पर
0: इन्हां द्वारा तत्तां
1: द्वारा
0: तुसा
1: के चलाया बंधन छुटे सब कुछ हो गयो पाए नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को

जो चलहै तुभै दुख पावै। जम काल सहै सिर डंडा ही, हर जन हर हर नाम समाणी। दुख जन्म मरण पव खंडा ही।

ऐसा नाम निरंजन हुए जेको मान जान मन को मन्ना सुरत हुआ मन बुद्ध मन्ना सहर भमन की सोदा मन्ना मिचूटा न खाए मन्ना निमका सासन जाए। ऐसा नाम निरंजन हुए जेको मन जान मन को मन्ना मार्ग ठा न पाए मन्ना पशु।

है सर्वंकर है सर्वासीय है सर्वनाशीय है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फ्रजंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेड़ विडानी विस्माद

कुदरत दिस है, कुदरत सुनिए, कुदरत बहुत सुखसार, कुदरत पाताल आकाशे, कुदरत सर्वाकार, कुदरत वेद प्राण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहना।

छड़िया होय कमल लगती आई है फालते वे पाए जे वे कार कमाई जे होय प्रभु लिखा ता थोड़ी दिना दी पाई है मत थोड़ी सेवा गवाई है मत थोड़ी सेवा।

0: जना की वर्तन नाम,
1: संत जना के मन विश्राम,
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन कोट,
0: हर जस करत संत दिन रात,
1: हर हर औकत साधक मात,
0: हर जन कह हर नाम निधान,
1: हर ब्रह्मजन की नो दान,
0: मन तन रंग रते रंग एक,
1: नानक जन के वेद विवेक,
0: हर का नाम जन को मुक्त

0: केंदर टाके
1: मनसरणी पर ठाकर प्रभ ताके
0: जह प्रसाद तुझको ना पहुँचे
1: मन सास सास सिमरो प्रवियुचे
0: जह प्रसाद पाई दर लव दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जह प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: माते सिमरत क्यों आलस की जय
0: जह प्रसाद असब अस्त असवारी
1: मातिस प्रभ को कबू नाम बिसारी
0: जह प्रसाद बाग में

0: संग सब होतन बेरा।
1: साध के संग पाए नाम रतन,
0: साध के संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा वरने कौन परानी,
0: नानक साध

0: मन की वासना मनते टरे।
1: जित पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मरे को ऐसा पास।
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: जिसन की माया ते होए भिन्न।
1: कर्म करत होवे न कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म।
1: फल की इच्छा नहीं बाछे
0: केवल भगत कीर्त

0: दर्भ को हिरे,
1: कई कोट पर दुख ना करे,
0: कई कोट माया श्रम माए,
1: कई कोट पर देश परमाए,
0: जित जित लावो तित तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर पे उपाए,
1: कई कोट पाथर वृक्ष ने पजाए,
0: कई कोट पवन पानी बैसांतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट ससियर सूर नखतर,
1: कई कोट देव दान इंद्र से शतर,
0: सगल समग्री अपने सूत तारे,
1: नानक जिस पावे तिस नस्तारे,
0: कई कोट राजस्थान सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरता सासत,
0: कई कोट किए रतन संबंध,
1: कई कोट नाना प्रकार जानत,
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी में स्वर धीवे,
0: कई कोट जख किन्नर पिचास,
1: कई कोट कूत प्रेत सुकर मृगाज,
0: सब ते नेरे सबहूं ते दूर,
1: नानक आपर त्रया परपूर,
0: कई कोट पाताल के बासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन में जी

0: सब को खो जनते
1: आत्मा में पार ब्रह्म जानते
0: कई कोट दर्शन प्रभ्यास
1: इनको मिलो प्रभु अविनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म ते लागा रंग
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक के जन सदा नाम तान
0: कई कोट खाणी अर खान

0: अपना प्रभु पुशाता
1: सोजन सर्व थोक का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पावे है
1: इसके दास सब पाप मिटावे
0: अवर सियानप सगली शाट

0: कट माहे
1: अनेक रंगना नांद
0: अनद अमृत प्राव का नाम
1: दे मैं इसका विश्राम
0: समाद अनहत नाद
1: कहना जाय चर्च विस्माद
0: देखा जिस आप दिखाए
1: नानक तिस जन सोजी पाए
0: अंतर सो बार अनंत
1: कट कट व्याप रहा भगवंत
0: आकाश पयाल
1: सर्व लो

0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर भी योही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभ ते सकली उत्पत
1: इस पावे ता करे विस्तार
0: इस पावे ता एक अंकार
1: कला लखी ना जाए
0: जिस पावे तिस रहे मिलाए
1: कवन कहिए दूर
0: आपे आप भरपूर
1: आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: आप वरतारा
0: सर्व नैन आपे खनहारा
1: सामग्री जाका तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: जानक खेल बनाया
0: आज्ञाकारी तीनी माया